0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल पिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मल का नेदो सरदा रास्कना पाट प्राक्टिस अंते अंते अंते रही।

गाड़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। तू कांधे को उठा के चलने पड़े न कोई बल्ले। आसमां से दो गुना ऊंचा तेरा कद है। इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है।

0: असली तो है ना, कितनी सुंदर।
1: सुन पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे।
2: तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
3: समझ गया भाई, पैसे दे के आता हूँ।

0: काबिल पुष्पा है लेकिन कुछ बातें वो ना जाने सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है
1: फिकर नहीं है उसके अंदर।